0: उन तो साथ ही
1: पापा तो मम्मी के साथ बाहर गए।
0: ये किताब उन्हें दे दीजिएगा और कह दीजिएगा कि मैं आया था।
1: दीदी से नहीं मिलेंगे?

पिना दिया। अरे बम्बई ने पैदा किया, बम्बई ने बड़ा किया, बम्बई ने खाना दिया, बम्बई ने पिना दिया, फिर भी

में है गुस्सा, होठों पे है हंसी, तूने सुना होगा हंसी जो वो हंसी, ऊपर ऊपर गरम अंदर अंदर नरम, पीछा करेंगे हम तेरा जन्म जन्म, हमसे तुझे छीन कोई किसी ने ये दम नहीं, हमने कसम ली है यहाँ तू नहीं तो हम नहीं।

बड़ी मेहरबानी बम्बैया राजा मदरासन रानी तेरे मेरे आगे दुनिया भरे पानी।

0: सामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस पासे मिले 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें
1: बेकरार करके हमें लगाई आप तो हमारे पसंद लौट आई।

फिर मुझे वो जलवा दिखा, फिर से एक दफा मुस्कुरा, फिर से मुझ पे बिजली गिरा। अब तो आ अभी जा, अब तो आ अभी जा अभी जा।

मस्त मस्त तेरी शोखियां, जुल्फ की ये काली बदलियां, ले उड़ेंगी ये आंधियां, दिल मेरा वो गया, दिल मेरा वो गया, वो गया। ओ मेरी बेबी डॉल, आया ना अरे कुछ तो बोल, ओ मेरी बेबी डॉल, आया ना अरे कुछ तो बोल, दिल की बात मेरे दिल की बात मेरे दिल की बात सुन गया, दिल की बात मेरे दिल की बात मेरे दिल की बात सुन गया।

सुनो सुनो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कहानी? हाँ, मगर कौन सी कहानी सुनाऊं? हाँ हाँ, तुम्हारी कहानी, मेरी कहानी, प्रेम कहानी। ओ लड़की दीवानी, सुनो एक कहानी। जवां है नजारे, हंसी है सितारे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8

जाना के हाँ हाँ और सुनो और सुनो। हाँ एक एक परी थी। क्या? एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, हंसी वो बड़ी थी। गगन देश था उसका। क्या? गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो। हाँ।

ए तू, अरे अरे अरे, ये तो फिर सो गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है? कोई है? कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।